0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत। महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।

0: लिखते हैं रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
0: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
1: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे।
0: जी
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है। उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने AI से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
0: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें AI के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए।
0: जी
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की,
0: जी
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
0: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
0: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही,
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई,
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी श्रोताओ, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की,
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स।
0: जी,
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए,
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
1: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की।
0: जी,
1: तो उन्होंने यानी सत्यानंद जी ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए।
0: जी,
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा।
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी, उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन

0: बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
1: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
0: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
1: जी,
0: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे, उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
0: जी जरूर।
1: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
0: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
1: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहां भी रहें, यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
0: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं, तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहां कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरिधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी

0: बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
1: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
2: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
1: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
2: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
1: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
2: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
1: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का श्रृंगार नहीं करने दूंगी।
2: भाई बता दूंगा ना बेटी।
1: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
2: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
1: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
2: सच्ची भाई?
1: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तू क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: विश अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सर तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सर। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
6: दासी!
7: जी, जी, जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद।

0: चरणामृत।
1: जी महाराज।
0: जाओ जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
1: रानी सा की जय हो।
2: आओ सखी, भीतर आओ।
1: जी वो
2: क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो।
1: वो कुछ नहीं।
2: कहो ना सखी, क्या बात है?
1: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
2: क्या, मेरे कान्हा का प्रसाद?
1: पर हमें तनिक शंका होती है।
2: दो दो हमें, हम अभी पियेंगे।
1: रुकिए रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विश्वत हो?
2: राणा भेजिया विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और काई, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी सा,
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा, मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
11: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी।

0: परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
1: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
2: क्या सच गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
3: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
2: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रुई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थीं।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: कितनी मधुर आवाज है। हाँ। सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
2: तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है। कितनी सारी?
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरे

0: जेलो तुम भी लो।
1: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
2: मैं भी
3: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
0: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
4: हाँ, यहाँ पर रखी तो है। कितनी सारी?
5: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
0: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
5: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
0: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
5: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
1: हाँ, ये बात तो ठीक है,
5: हो गई दुगनी।
3: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
0: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
5: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
0: हाँ, 60 किलोग्राम है।
1: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो?
0: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
3: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
1: हाँ, 61 किलोग्राम।
6: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
7: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
8: 300 किलोग्राम?
5: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
6: और चीटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
1: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
7: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो?
0: तुम सोचो डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
1: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
9: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
12: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது தேசிய கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கிய விளம்பரதார் நிகழ்ச்சி. இன்னும் சில நொடிகள் கேட்கலாம். 4 மணிக்கான செய்தி சுருக்கம் சென்னையில். அதனை தொடர்ந்து பொதிகை தும்பை நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. நம்ம நிலைப்பண்பலை 102.6.

की लीला स्थली ब्रज धरा धाम को शत शत नमन वंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पावन पवित्र मोक्षदायिनी मथुरा नगरी के जगत विख्यात श्री द्वारिकाधीश मंदिर से मैं डॉक्टर मीनू खरे अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर नृत्य गोपाल और कृष्ण जन्म स्थान से श्रीयुत श्री कृष्ण व देश दीपक मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, अशेष मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तीनों लोकों से न्यारी मथुरापुरी में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव। इस अवसर पर मथुरा नगरी कुछ यूं सजी है मानो कोई नववधु अपने प्रियतम का स्वागत करने जा रही हो। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करती हुई ये वही नगरी है जिसके स्थापना भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने आततायी

0: रावणासुर के वध के पश्चात किया था और कालांतर में द्वापर युग में इसी नगरी को चुना। भगवान श्री कृष्ण ने आततायी कंस के नाश और सत्य मूल्यों की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन सभी को प्रतीक्षा आगत के स्वागत की, अजन्मे के जन्म की। कृष्ण का जन्म इस संसार का सुंदरतम क्षण है। मेरो मन आनंद भयो ब्रज राज ही याचन आयो, अपने अपने मन की मतो कही सब परिवार पठायो। अधर्म के नाश हेतु साक्षात परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप वासुदेव जनार्दन रसेश्वर सर्वेश्वर ब्रिजेश्वर योगेश्वर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से इस धरा को धन्य किया। आज उसी दिव्य और अलौकिक घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति के साक्षी बनने को उत्सुक आज यहाँ उपस्थित हर जन हर भक्तगण कण कण से प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यशोदा नंदन नंद दुलारे कन्हैया के आवन की कड़ी जो है महोत्सव चारों ओर है। पंपानंद आज यहाँ साक्षात परस्ता हुआ, उल्लास और उमंग में सराबोर श्रद्धा का सागर आज भक्तों के मन में उमड़ता हुआ। सभी कंठों से राधे कृष्ण की वाणी गुंजायमान होती हुई आज की रात याद दिलाती है द्वापर युग की उस विलक्षण और अलौकिक घटना की, जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र सूर्य नारायण सिंह राशि में और चंद्र वृष राशि में अवस्थित थे, तभी कान्हा ने जन्म लेकर इस धरा को धन्य किया। यूं तो आज श्री द्वारकाधीश मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं ऋतुराज के दर्शन के लिए, परंतु हर किसी की प्रतीक्षा मध्य रात्रि की, जब कान्हा प्रतीकात्मक रूप से एक बार पुनः प्रकट होंगे। एक बार पुनः ब्रज की ये धारा धन्य होगी कन्हैया के अवतरण से। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। श्री यमुना महारानी के विश्राम घाट और अस्कुंडा घाट के बीच बसे श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आयोजित कान्हा के जन्म का ये उत्सव अद्भुत विलक्षण और अलौकिक प्रतीत होता है। रंगीन प्रकाश में नहाया हुआ ये प्रांगण मानो किसी और दुनिया में ले जाता प्रतीत होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर मथुरा नगरी ही मात्र ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म और शक्ति एक साथ प्रकट हुए। गीता के पुरोधा लीलाधारी कृष्ण और अष्टभुजा माँ योग माया की प्राकट्य भूमि होने के कारण आज इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। ब्रज की महिमा को कहे को बरनई ब्रज धाम, जहां बसत हर सांस में श्री राधे घनश्याम। और अब आगे का हाल आंखों देखा हाल सुनाने के लिए डॉक्टर नृत्य गोपाल।
1: धन्यवाद डॉक्टर मीनू खरे। नमस्कार, मैं नृत्य गोपाल राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से बोल रहा हूँ। आज के मंगल उत्सव में आकाशवाणी के माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। धन्य धन्य ब्रजभूमि जहाँ प्रगटे वनवारी। जी हाँ श्रोताओ, यह ब्रज धरा वंदनीय है, पावन मथुरा नगरी अभिनंदनीय है, जहाँ पर हमारे ब्रजराज लाडले कृष्ण कन्हैया ने यहाँ इस धरा पर जन्म लिया। ब्रजराज श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में आज यह मथुरा नगरी, यह द्वारकाधीश मंदिर दिव्यता और भव्यता की अद्भुत संगम बना हुआ है। और इस संगम में जहाँ से हम आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, उसके ठीक सामने द्वारकाधीश महाराज जी का श्री विग्रह विराजित है और इस समय विग्रह स्थल के पट बंद हैं और बहुत सुंदर सा पीत वर्णी ये जो पर्दा आया हुआ है जिसमें झिलमिल सितारे लगे हुए हैं, जिसकी आभा से ये पूरा भवन, ये पूरा प्रांगण आलोकित हो रहा है। और ठीक

0: के बाहर जगमोहन में कुछ हिस्से को बहुत सुंदर सी रेलिंग से घेरा हुआ है। इस परिधि के भीतर सेवायत जन, जो सिर्फ उन्हीं का प्रवेश यहाँ पर वांछनीय है, वही इसमें भीतर है। सेवायत जन अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक यहाँ पर इतने सुंदर हल्दी के थापे रखे गए हैं और सेवायत जन जिस तरीके से जैसे इधर उधर अपने कार्यों में तल्लीन हैं, वह अद्भुत है, देखने योग्य है। और पुष्टि मार्ग में एक विशेष जो परंपरा है, जिस परंपरा को अपरस सेवा कहा जाता है, इसके तहत वे सभी किसी बाहर के व्यक्ति से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं और अंदर श्री विग्रह और श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा में एक एक पल को लगा देना चाहते हैं। और आज हमने देखा कि द्वारकाधीश मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्वयं कह उठती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और ठीक उसके साथ क्या ही अद्भुत संयोग कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त जन हैं, एक दूसरे की सुविधा का ऐसे ध्यान रखे हुए हैं कि किसी को कहीं धक्का ना लग जाए, किसी को असुविधा ना हो जाए। और लगता है जैसे कि गुजरात के नरसिंह मेहता आ गए हैं और वो सबको ये पाठ पढ़ा चुके हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। और आज ब्रज धरा क्या ही सुंदर, और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ठाकुर जी का ये जो श्री विग्रह है, इसके सम्मुख हवेली संगीत का गायन हो रहा है, मृदंग बहुत सुंदर बज रहा है, और जिस तरीके के हारमोनियम पर पूरी कृष्ण गाथा को अपने द्वारकाधीश को सुनाया जा रहा है, ये यहाँ की विलक्षण परंपरा है। राग भोग और श्रृंगार पुष्टि मार्ग में इन तीनों का जो समागम है, जो भोग लगेगा वही गाया जाएगा, जो गाया जाएगा वही पहनाया जाएगा, ये तीनों का जो सम्मिश्रण है वह अद्भुत है। और ठीक द्वारकाधीश मंदिर के जहां पर सामने विराजित हैं, उस उनके सीधे हाथ की ओर हम देख रहे हैं, बाईं हाथ की ओर यहां पर जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है, जिसमें यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। और जैसे जैसे परिक्रमा मार्ग में जाते हैं, यहाँ पर जो संस्कृत विद्यालय प्रथम तल पर बनी हुई है, उसके जो आचार्य हैं, उपाचार्य हैं, उसके विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनकी सेवा अद्भुत है, वह देखने योग्य है। और ये सेवा भाव भारत की आत्मा है। और यहाँ पर जैसे जैसे परिक्रमा में लोग जा रहे हैं, जैसे जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं, संख्या निरंतर बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि ये जो श्रद्धालुओं का जो तांता है, ये अपने आप में ये कह रहा है, कन्हैया आओ तो सही, तनिक आओ तो सही, दर्शन दो तो सही। और अब हम देख रहे, देखिए कितनी जोर की आवाज आपके तक पहुंच रही होगी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, क्या ही सुंदर गूंज। और ये यहाँ पर, और अब हम आपको लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन, जहां से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंट्रेटर श्री देश दीपक मिश्रा आपको वहां का आंखों देखा हाल सुनाएंगे।
1: जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थली के भागवत भवन से मैं देश दीपक मिश्र अपने साथी कमेंटेटर श्रीयुत श्री कृष्ण के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं भी प्रेषित करता हूं। जब भीतर का अंधियारा टूटे तब कृष्ण जन्म लेते हैं, जब मन की बेड़ियां छूटे तब कृष्ण जन्म लेते हैं। मथुरा कोई दूर नगर नहीं, ये तो अपने मन में है, और जब मन में प्रेम जगे समझो तब कृष्ण जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज सिर्फ इस धराधाम पर प्रतीक रूप पे ही नहीं होगा, भगवान जन्मेंगे हर हृदय में, हर प्राणों में, हर चेतना में, क्योंकि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु, हर भक्त अपनी आस्था, विश्वास और भक्ति के दम पर यहाँ पर आया है, तो अपने परमात्मा, अपने आराध्य, अपने ईष्ट के जन्म के उन क्षणों का साक्षात्कार करने के लिए, जिसके लिए उल्लसित और उमंगित होकर संपूर्ण मथुरा ने कर लिया है मानो अपना श्रृंगार। आज मथुरा की सज्जा देखते हुए जिस तरह से रोशनी में ये नहाई हुई है, जिस तरह से ये आनंद में, ये तो आनंद प्रेम और माधुर्य की नगरी ही है, रास रंग इसके धरा का एक विशेषता है, लेकिन जिस तरह से आज मथुरा ने किया है अपना श्रृंगार, वो स्वर्ग से भी देवता यहाँ आने को लालायित हैं। वैसे श्री हरि विष्णु जब अवतार लेते हैं तो समस्त देव स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, समस्त तीर्थ वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं, तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इस समय न केवल हमारे परमात्मा श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकी देखने का सुअवसर मिलेगा, बल्कि समस्त तीर्थों का जो पुण्य है वो भी उन्हें मिलेगा।

0: जहां से हम ये आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं वो भागवत भवन है, श्री कृष्ण जन्म स्थली का वो मुख्य भवन जहां पर पूजन अर्चन होता है और जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका, मथुरा मोक्षदायिनी नगरी है और इस मोक्षदायिनी नगरी में पहुंच चुके हैं। लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ बड़े ही अनुशासित ढंग से भागवत भवन में प्रवेश करते हैं और मुख्य विग्रह के सामने आकर ठिठकते हैं। मुख्य भवन में जो विग्रह हैं उन पर जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो अपलक हम उन्हें निहारते रह सकते हैं। आज परमात्मा का जो विशेष श्रृंगार है वो अद्भुत और अनूठा है। प्रतिवर्ष की तरह जैसे भगवान की पोशाक होती है वो अनूठी है, इस बार भगवान ने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं और इस वस्त्र को पंचरत्नी पोशाक नाम दिया गया है। ये पंचरत्न उस पर जरी और काम के साथ हीरे जवाहरात माणिक्य के साथ अंकन किए गए हैं। वो पंचरत्न हैं जो समुद्र मंथन में निकले हुए थे, श्री हरि विष्णु के पास आए थे और उनका संबंध श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। कामधेनु गाय, पांचजन्य शंख, अमृत कलश, एरावत हाथी जो कि श्री हरि विष्णु को मिला था, उन्होंने बाद में इंद्र के मांगने पर उन्हें दे दिया था, और कल्प वृक्ष अंकित हैं। इतनी सुंदर मनमोहक छवि है। भगवान ने मुकुट जो धारण किया है वो अद्भुत और अनूठा है। स्वर्ण जड़ित इस मुकुट में अनेकों माणिक के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और वो सब अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। इतरा इसलिए नहीं रहे हैं कि उनमें हीरे जवाहरात और माणिक के लगे हुए हैं, बल्कि इसलिए इतरा रहे हैं कि हमारे परमात्मा ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया है। भगवान ने कंठाहार पहन रखा है, हाथों में चूड़ा है, कमर में करधनी है। उनके आभूषणों के साथ उनकी सज्जा देखने लायक है। जब दृष्टि पड़ती है तो अपलक लोग देखते रह जाते हैं। राधा रानी की आंखों से बरसती हुई करुणा मानो सभी को सम्मोहित कर ले रही है। उनके पीतांबर वस्त्रों को देखकर लोगों के आंखों से अश्रु छलक पड़ते हैं। जो सुंदर सजावट की गई है वो भगवान के पुष्प बंगले की है जिसे कलहंस पुष्प बंगले का नाम दिया गया है। सुंदर हंस बने हुए हैं जो कि श्वेत रंग के पुष्पों से बनाए गए हैं और गुलाबी रंग के पुष्पों से उनके पंख हैं। नीले रंग के मयूरों की आकृति है। श्वेत, गुलाबी और हरे रंग के पुष्प और पत्तियों का सुंदर समावेश किया गया है। एक ऐसी अद्भुत चित्ताकर्षक झांकी है जिसे देखते हुए श्रद्धालु यहाँ पर ठिठक जाते हैं और ये वातावरण पूरी मथुरा में छाया हुआ है। मथुरा जो कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति और आस्था का एक केंद्र है वो स्वागत करने के लिए तैयार है। समस्त द्वारों पर जो तोरण द्वार बने हैं वो मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं। मथुरा के समस्त चौराहों पर रेशमी वस्त्रों, गुब्बारों, विद्युत लड़ियों और खिलौनों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रवेश करते ही श्रद्धालु अपलक निहारते रहते हैं अपने कान्हा की इस धरती पर जहां पर उन्होंने लीलाएं की थी। मथुरा के प्रवेश द्वारों पर की गई सजावट सभी का स्वागत कर रही है। स्वागत तो यहाँ पर भागवत भवन में श्रद्धालुओं का भी हो रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं, तालियां बजाते हुए श्री हरि बोल के नारों से गुंजायमान कर रखा है और तालियां बजा के आते हैं। बस एक ही अभिलाषा होती है कि अपने प्रभु की छवि को किस तरह निहार लें। उस मनोरम छवि को सदैव के लिए मानस पटल पर अंकित करना चाहते हैं। ठिटकते हैं, लेकिन जो सेवायत हैं, जो हमारे यहाँ व्यवस्था में लगे लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी श्रद्धा आहत ना हो, धीरे से कंधे पर थपकी देकर उन्हें आगे बढ़ने का एक इशारा कर देते हैं। बाहर आज बारिश भी कुछ देर पहले बहुत तेज हुई थी। ऐसा लगता था कि द्वापर का वो दृश्य जीवंत हो गया जब परमात्मा ने यहाँ पर जन्म लिया था। श्रद्धालुओं का अगर मथुरा में प्रवेश होता है तो जगह जगह उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं। कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण जन्म, गौचारण जैसे तमाम प्रसंग हैं जो कि वहां पर अंकित हैं। तो ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहाँ पर पूजन, जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं, सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाईं तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुत श्री कृष्ण जी को ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी। एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय

अब भागवत भवन में जहां ठाकुर जी अपनी आलादरी शक्ति श्री राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इसमें भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पल आए जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का, अपनी लाला के आगमन की प्रतीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते हैं, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन जो सेवायत है, सुरक्षा प्रहरी है, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः तीन मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है और उस कारागार में जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, धन कंस का कारागार, हर ने लिया जहाँ अवतार, ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धा तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में, शंख के साथ में, झान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ और उसके बाद सुबह 8 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ और इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प लिया गया। इसके बाद मंगलार्चन, वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिचड़ों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई और उसके आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत वन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित हैं। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन को गीता को उपदेश दे रहे हैं, आज वहाँ से निकासी है और जो सामान्यतः जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहाँ से प्रवेश ले रहे हैं और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, उनसे जगह जगह सजाया गया है और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए। उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भागवत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियाँ बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है, काली अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था, आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है। ऐसा प्रदृश्य, शायद अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और जो कान्हा की नगरी है तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान बड़े अनुनय विनय के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं, उनसे विनती की जा रही है, हे लाला साथ को ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि हर मंदिर, हर मठ

0: हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहां जहां भी यहां पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: धन्यवाद श्री कृष्ण, आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है। कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड का, ऐसे और देखिए राजाधिराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिग्रह कहा जाता था। और आज इसी हरिग्रह में हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई, बाकी चाह न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा सभी भक्ति भावना में लीन। चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों तोरणों, रंग बिरंगी झालरों, कुमकुमों, बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गिक द्वार हों। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हों। तीतर पाखी बादलों की झूमती हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां, और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी, जन्मे कृष्ण मुरारी ना। आज प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है, उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना, उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। मध्य रात्रि का घना अंधकार है, लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास, आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी अपने अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं। उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झलकार जैसी प्रतीत होती हैं। आज वे स्वयं को सजाकर खड़ी हैं, क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उफन कर शिशु कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, चरणों को छू भर लिया हुई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
2: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ, हम जिधर देख रहे हैं चारों ओर श्रद्धालु अपार जन समूह इस समय श्रद्धावनत होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई, वैसे वैसे जय घोष से

0: शब्दों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है। इस उल्लास के वर्णन करना हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फर चंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है तो यहाँ पर भक्तों का ही जो समूह है इनका नृत्य देखने लायक है। और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं, और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं कभी मोर पंख को देखते हैं, और कैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगाम बरसाना, दिव्य महाराष्ट्र की पावन धरा वृंदावन की छवि आज अलौकिक है। और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है, बड़ो भाग नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के सु अवसर पर जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से, और यहाँ के सेवायत धन्य है, देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है, कुछ सेवायत इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातःकाल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू, ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है, और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दही दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए लाया जा रहा है। और प्रातः काल भी यहाँ पर अभिषेक हुआ, श्री कृष्ण की जन्मपत्री का वाचन हुआ, और अब इस समय जब कन्हैया के जन्म की घड़ी पास आ रही है तो जैसे जैसे ये जैसे पर्दा हिलता तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है। और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे, आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
1: बहुत बढ़ती हुई व्यग्रता उत्कंठा उल्लास मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में जो कि जहां पर बल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है, पुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहाँ पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है, और यहाँ पर जय जयकार के नारे भगवान के, लोग अब उनसे प्रतीक्षा के पल बहुत भारी हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई दीर्घाओं में, दर्शक दीर्घाओं में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए उनके वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ से कम एक बार वो देख को लें। आप श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। एक आकाशवाणी द्वापर युग में भी हुई थी जब कि हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा, लेकिन एक के बाद एक 7 पुत्रों को मारा गया, पर जिसे भगवान बचाए, जब भगवान स्वयं अवतार ले तो फिर किसकी क्या विसार। चारों ओर अंधकार था पर प्रकाश का अद्भुत संचार होने वाला था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, संकादि ऋषि स्तुति करने लगे, वासु सर्व निवास परम पुष्प वासुदेव। देवकी वासुदेव विस्मित माँ ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी संतान के इस दिव्य रूप के आभा सहने की नेत्र

0: में क्षमता नहीं है। और देखते देखते चतुर्भुज रूप नीलमणि सी कांति वाले द्विभुज बालक के रूप में बदल कर बाल रूप में रुदन करने लगे। ऐश्वर्य का विस्मरण हुआ और वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने शिशु को गोद में उठाया, पांवों की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और एक नई यात्रा की ओर चल पड़े वासुदेव कृष्ण को लेकर। मानो अपने यमुना नदी ज्योति उफान पर थी, वो धीमे धीमे, और अब यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हो गए हैं चारों ओर। जिधर भी देखिए आपको भक्तगण दिखेंगे, उनके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। भीड़ होने के बाद भी उनके अंदर सामंजस्य है और वो एक दूसरे को किनारे होकर जगह दे रहे हैं खड़े होने की। और हमारे बीच में ब्रज संस्कृति साहित्य के विशेषज्ञ और समालोचक आशुतोष शुक्ल जी हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे आशुतोष शुक्ल।
1: अब वह घड़ी निकट है जब लाला का अवतार होने वाला है। अवतार ऐसा क्षण है जो बड़ा ही भक्तिपूर्ण होता है। यह अवतार का क्षण भावनाओं का चरम शीर्ष होता है, भक्ति का चरम शीर्ष होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भागवत कहता है, निशीथे तम उद्भूते जाय मने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत यथा प्राच्यम दिश इंदु इव पुष्कलः। जिसका भावार्थ है, मध्य रात्रि के उस दिव्य समय में जब भगवान जनार्दन का प्राकट्य हुआ, तब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इसी बीच मंदिर के पट खुल गए हैं, पर्दा हट गया है और श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के दर्शन सबको सुलभ हो रहे हैं। और हम इसी के साथ ही मां भागवत के उस क्षण पर चलते हैं जब माता देवकी और पिता वसुदेव ने अपने दिव्य बालक के दर्शन किए, तो उन्होंने देखा कि वह साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित हो चुके हैं। भागवत कहता है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि युदायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। इसका भावार्थ है, वसुदेव ने उस अद्भुत बालक के दर्शन किए जिसके नेत्र कमल के समान थे, वे चार भुजाओं वाले थे, उनके हाथों में दिव्य आयुध थे, उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनका स्वरूप वर्षा के गहरे मेघ के समान अत्यंत मनोहर था। ऐसे अलौकिक स्वरूप को देखकर देवकी और वसुदेव का हृदय आनंद आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि जिन परमात्मा की उन्होंने आराधना की, वही आज पुत्र रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु अपने इस दिव्य स्वरूप को छिपाकर सामान्य बालक का रूप धारण करें ताकि कंस के इस दिव्य प्राकट्य का ज्ञान न हो। श्रीमद् भागवत में माता देवकी की यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में आती है, उपसंहर विश्वात्मन अदह रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। इसका भावार्थ है, हे विश्वात्मा अपने इस अलौकिक चतुर्भुज स्वरूप को अब छिपा लीजिए। शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित यह दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप सामान्य बालक के रूप में अपनी लीला प्रारंभ करें। यही वह अद्भुत क्षण है जहां परम सत्ता ने प्रेम के लिए स्वयं को सीमित कर लिया। जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वही माता पिता की गोद में आने के लिए तैयार हो गए। यही भगवान और भक्त के संबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के साथ मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कृष्ण जी के।
2: धन्यवाद आशुतोष शुक्ला जी, क्या ही सुंदर पल, अद्भुत घड़ी, और जिस घड़ी की प्रतीक्षा सभी को थी। और इस समय द्वारकाधीश मंदिर के ये पट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की अपलक निहारने की ये जो कला, ये जो दृष्टि और वो जो कन्हैया को अपने नेत्रों में भरने की ये जो

0: बालक है। श्रद्धालु इस समय राजाधिराज द्वारकाधीश की अनुपम छवि को एकटक अपलक होकर निहारे जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, शंख ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि, नफीरी की ध्वनि, क्या आज के इस धन्य यशोदा भाग्य त्योहारो जिन ऐसा सुत जायो। आज द्वारकाधीश प्रभु का अलौकिक श्रृंगार हम देख रहे हैं ठीक सामने। इस श्रृंगार को भारी श्रृंगार कहा जाता है और यहाँ आभूषण और अलंकारों से सुसज्जित द्वारकाधीश अवर्णनीय छवि, भक्तजन मंत्रमुग्ध आकर्षित हुए जा रहे हैं। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ पर मुक्ताहार, मणियों की मालाएं, कलाइयों में कंगन, सुंदर करधनी युक्त आभा बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। जो जहाँ खड़ा है वहीं पर ठगा सा रह गया है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मनमोहन के साथ मनमोहक भी लग रहे हैं और संभवतः यही वह श्रृंगार है, यही वह सौंदर्य है, यही वह आकर्षण रहा होगा जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिख दिया, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वसनम मधुरम, चरितम मधुरम, वचनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज लोकमानस, जनमानस का उत्साह, उमंग और श्रद्धालुओं में इस समय बहुत तीव्रता से हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत आगे जाऊं और अपने कन्हैया को, अपने द्वारकाधीश को, उनके बगल में विराजित रुक्मणी जी को यहां जाकर के निकट से देख लूं, दर्शन कर लूं, या मुरली मनोहर की अद्भुत छवि उसका दर्शन कर लूं। और कभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी सामने पर्दे पर नाचते हुए मोरों की छवि देख रहे हैं, और लेकिन पुनः सभी की दृष्टि अपने अपने द्वारकाधीश के चरणों में लगी हुई है। और पुष्टि मार्ग में यही कहा जाता है, चरणों से ऊपर की ओर जैसे जैसे दर्शन किए जाएं, कुंडल की छवि अद्भुत है, क्या ही सुंदर ये मुकुट की छवि। आप जिस अंग को देखें, जिस जगह से देखें, मेरे कन्हैया को यहाँ पर देखना और ये देखते देखते यहाँ पर आतुरता से बाट जो रहे बाहर जो श्रद्धालु खड़े थे, अब वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और धन्य है ये ब्रजवासी और धन्य है ये सेवायत। आप अद्भुत देखेंगे, जिसको भी किसी को कष्ट ना हो, जो यहाँ पर सेवक लगे हुए हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सिर्फ सबसे यही कहते हैं, राधे राधे राधे जरा आगे चलो। और ये ब्रज में जैसे जैसे राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, इसकी गूंज के संग ये ब्रजवासी आगे आ रहे हैं, ये यहाँ पर श्रद्धालु आगे आ रहे हैं। और किसी को असुविधा ना हो इसके लिए हमारे ये जो व्यवस्था में लगे हुए सेवक हैं, इनका भी कहना क्या, इनको धन्यवाद। और इस समय चलते बहुत सुंदर झांकी के लिए, वहां पर भागवत भवन में श्री कृष्ण जन्म स्थान से क्या दृश्य, क्या मनोरम छवि है, इसके लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन।
1: अद्भुत है हमारे कन्हैया के जन्मोत्सव की ये छटा। ये संपूर्ण अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तपुरिया ही नहीं, स्वर्ग से देवता भी लालायित होकर इस दृश्य का साक्षात्कार करने के लिए एकत्र हो गए हैं। और सबकी दृष्टि इस समय पूरे ब्रजमंडल पर है, जहां हर घर में कृष्ण जन्म के आनंद की बधाइयां गाई जाने लगी हैं, क्योंकि वो क्षण अत्यंत निकट आ गया है जब परमात्मा एक बार पुनः अवतरित होंगे प्रतीक रूप में इस धराधाम पर, हम सभी को आश्वस्त करने के लिए। यहाँ भागवत भवन के जो विग्रह है वहां पर सहस्त्रार्चन पूर्ण हो चुका है, वहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं भगवान के जन्म के समय उनके विशिष्ट पूजन की। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अनवरत बढ़ता चला जा रहा है, वो बाई तरफ से प्रवेश करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, और अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा विविध रूपों में परिलक्षित हो रही है। बच्चों को उन्होंने कान्हा बना रखा है, कोई राधिका बनाए हैं, उन्हें जब लाते हैं विग्रह के सामने तो अपने कंधे पर बैठा ले रहे हैं, ठिठकते हैं, लेकिन एक बार पुनः विवशता है क्योंकि पीछे से प्रवाह भगवती यमुना के समानांतर चला आ रहा है। परसों से ही लगातार जब श्रद्धालु इस धराधाम पर आ रहे थे तो देखकर लगता नहीं था कि कैसे इतने श्रद्धालु इस ब्रजमंडल में समाएंगे, लेकिन ममता मई माँ की तरह इस पूरी धराधाम ने सभी को समाहित कर लिया है। सामने छोटे जगमोहन में पुजारी विराजमान हो चुके हैं, वहां पर पूजन की तैयारियां चल चुकी हैं, जो स्वर्ण और रजत के चौकियां हैं वो लग गई हैं, जहां पर कुछ ही पलों के बाद प्राकट्य के बाद भगवान की आरती होगी, वहां पर वो अपने दर्शन देंगे। और जो बड़ा जगमोहन कह सकते हैं, जिसे आज घेर कर विशेष रूप

0: पे बनाया गया, कुछ विशिष्ट जन बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पर इस समय भजन चल रहा है और लोग भजन में नृत्य भी कर रहे हैं, आह्लादित है कि कृष्ण जन्म का ये उत्साह है। यहाँ पर आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ड्रोन के द्वारा बाहर भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ काशी और अयोध्या से भी भगवान के लिए विभिन्न पोशाक और उनके साथ लिए प्रसाद आया है वो भी चढ़ेगा, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों को स्थलों को जोड़कर एक विविधता की गई है। यहाँ पर जब आते हैं तो मुख्य विग्रह के ठीक दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के विग्रह भी विराजमान हैं और उनके ठीक सामने हनुमंत लाल उनके दर्शन करते हैं, जबकि मुख्य विग्रह के बाईं तरफ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, जो कि ब्रज की संस्कृति और पुरी के उड़ीसा की परंपराओं का एक वैशिष्ट पालन है। सामने एक शिवलिंग है और उसके ठीक सामने भगवती दुर्गा जी हैं, यानी कि वैष्णव, शैव और शक्ति तीनों ही परंपराओं का अद्भुत पालन यहाँ पर होता है। बात हम करें भागवत भवन की, तो भागवत भवन की विशिष्ट विशेषता इसकी है जो दृश्य कथा वाचन की परंपरा है। इस भवन के स्तंभों, दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की कथा चित्रित है। बाल रूप के कहीं प्रसंग है तो कहीं गोप गोपियों के साथ लीला है, कहीं कान्हा का प्रेम है तो कहीं कृष्ण का ज्ञान। यहाँ की दीवारें भी कथा कहती हैं और स्तंभ मात्र भार नहीं उठाते, उनकी लीलाओं के साक्षी भी बनते हैं। और अचानक बड़े जोर से एक हलचल सी हुई है, कोलाहल से हुई है, ये माइक्रोफोन से आवाज भी जा रही होगी। श्रद्धालु उत्साहित हो गए क्योंकि वो क्षण आने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को क्या कहा जाए। उन्हें लगता है कि पुजारी जी थोड़ा सा भी पर्दा हिलाते हैं तो लगता है प्राकट्य हो गया है, जबकि वो क्षण है। और उनके उत्साह में उत्साह मिलाते पूरे जगमोहन में लोग खड़े हो गए हैं, अबीर गुलाल उड़ाकर नृत्य करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि वो घड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत वातावरण रोमांचित कर देने वाला है। लोग यहाँ ठिटकते हैं, खड़े होते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, उनकी छवि आंखों से आंखें मिलती हैं तो अपलक उन्हें देखते रहते हैं और अश्रु बहने लगते हैं, स्वयं रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। और देशी और विदेशी पुष्पों से सज्जित, सुगंधित ये पूरा वातावरण आज अपने परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, जहां पर विशिष्ट पूजन अर्चन अपने अंतिम आयाम पर पहुंचेंगे और प्रकटेंगे एक बार फिर आठवें अवतार के रूप में हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने चुना है इस ब्रज धाम को, जहां आकर सभी लोग आनंदित हैं, उल्लसित हैं, उमंगित हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्रीय और लोक कलाकारों ने मंच बनाए हुए हैं पूरे मथुरा में, जहां पर वो गीत संगीत से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये वो धराधाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। यहाँ की रज भी मोक्षदायिनी है, इसे देवता भी पूजते हैं और पूजें भी क्यों ना, क्योंकि ये वही रज है जिसमें हमारे लाला ने जब कभी माता यशोदा से बिलख कर कोई जिद पूरी नहीं की तो उनके आंसू इसी रज में है। हमारे नंद बाबा की गऊओं को चराते समय या फिर सखवा के संग खेलते हुए उनके जो पसीने की बूंदे गिरी तो वो भी इसी रज में है। और एक बार फिर श्रद्धालुओं का प्रवाह फिर जोर से उत्साह से बढ़ गया है, तालियां बजती हुई, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता हुआ, भावनाएं ऊंची पड़ते हुई। और अब जबकि वो प्राकट्य का समय नजदीक आने वाला है, आगे का विवरण देने के लिए श्री कृष्ण जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देश दीपक जी। भक्तों के आने का क्रम अचानक से बढ़ गया है और ये मुख्य मंदिर का पर्दा गिरा दिया गया है और भक्तों में एक उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, दोनों पैरों पर उछल उछल कर, दोनों हाथ ऊपर कर कर श्री राधे जय श्री कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवायतों ने मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान के जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं, जो परंपराएं, उनका पालन किया जा रहा है। और जो मंदिर के ठीक सामने जो विशेष स्थान बनाया गया है, जहाँ पर विशेष जन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, सभी हाथ ऊपर कर उठा कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा है उस पल की कि जब ये कपाट खुलते हैं और जो भक्तों का आने का क्रम था अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कपाट खुलने की प्रतीक्षा है। यही तो वो पल था जिसको प्रतीक्षा वर्ष पर्यंत करते हैं और आज इस विशेष मौके पर उस पल को कैसे गवा दें। सुरक्षा प्रहरी सेवायत ने बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि भक्तों का आने क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, संभालना मुश्किल हो पा रहा, लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं कम नहीं हो पा रहा।

और ये पट संबंध है जो यहाँ पर सेवाएं हैं, पट के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें दो मयूर बने हैं और जो कास्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें पीतल से मोर और नीचे दो मोर नाचते हुए अद्भुत दृश्य है। ये वो बेसब्री की घड़ियां हैं जिनको इंतजार करना हर एक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बस किसी भी पल ये पट खुलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं अपलक निहार रहे हैं कि कब वो घड़ी आए और जब वो लाला का प्रथम दर्शन करें। प्राकट्य उत्सव के बाद जब लाला बाहर आते हैं उस घड़ी को देखने के लिए, निहारने के लिए सभी एकजुट, और ये कपाट खोल दिए गए हैं लेकिन अभी पर्दा नहीं खुला है। भक्तों में उत्साह है, अचानक जैसे राधे का जयघोष हो रहा है और ये सुंदर पर्दा जिसमें गौ माता बनी है, दो हाथी बने हैं, उसमें एक वृक्ष है, बहुत ही रंग बिरंगे झिलमिल सितारों से ये पर्दा जिसके हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, नृत्य कर रहे हैं और जो यहाँ पर भक्त लोग भजन गा रहे थे, अचानक उनके भजन गाने में ढोल झांझ मजीरा मृदंग और यह पर्दा खुल चुका है। प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर एक रजत कमल है, यंत्र चालित एकदम धीरे धीरे उसकी पंखड़ियाँ खुलती हुई क्रमशः पंखड़ियाँ खुल रही हैं और ये लड्डू गोपाल के प्रथम दर्शन आम भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, यही दृश्य ऐसा जो सभी अपने नजरों में नेत्रों बसा लेना चाहते हैं। वहाँ पर जो दूसरे सेवाएं थे वो आरती कर रहे हैं और इसमें प्रथम कल से यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी स्वर्ग से यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और सुगंधित द्रव्य भी वहाँ पर बरसाए जा रहे हैं, गुलाब जल की वर्षा हो रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका है और ढोल झांझ मजीरे मृदंग शंख इनका संदेश और अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है। भक्त का ऐसा समूह और शायद कहीं प्रतीत नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग अपने मोबाइल लेकर आए, जैसे जन है, सभी के मोबाइल ऊपर उठे हुए हैं और यहाँ के दृश्य अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने परिवारिक जनों को, अपने मोहल्ले में, टोले में, अपने जनपद में यहाँ के दृश्य वहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और इसी दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं। और ये कमल जो रजत कमल था उसकी पंखुड़ियाँ खुल चुकी हैं, वहाँ पर चल विग्रह लड्डू गोपाल के विराजमान हैं, उन्होंने पीले वस्त्रों से अपने आप का श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वे सब तालियां बजा बजा कर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं और सभी का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक लड्डू गोपाल को निहार सकें। लेकिन जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने नहीं दे रहा है और इस समय आरती हो रही है और इस आरती के बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो यहाँ पर सेवायत हैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्त के भाव के साथ अपने शीर्ष पर रखकर बाहर यहाँ पर एक मंच बनाया गया है जहाँ पर एक रजत स्वर्ण मंडित एक कामधेन व्रत की गई है जिनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से प्रभु का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। और इस समय जो आरती क्रम है वहाँ पर चल रहा है और भक्त लगातार आके आते आ जा रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था की गई ध्वनि विस्तार केंद्रों से कि जो ढोल मंजीरे शंख की जो अद्भुत ध्वनि है पूरे जन्म स्थान में ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आसपास जो जितना क्षेत्र है सभी जगह पर यहाँ पर ये ध्वनियाँ बिखर रही हैं और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। जो भक्त जहाँ भी हैं ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं, आज तो अद्भुत दृश्य है। अचानक भक्तजन उछल उछल नृत्य कर रहे हैं और जितने विशेष जन हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सकें। कुछ यहाँ पर दृश्य आए, कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं

0: जन उछल छल नृत्य कर रहे हैं और जितने विशेष जन हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सके। कुछ यहाँ पर दृश्य आए, कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक पालने में टोकरे का रूप दिया, उन पर लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पर दृश्य करा रहे हैं। और जो कृष्ण के विविध रूप है, जो राधे राधे का अभिवादन है, चाहे गीता का पठन पाठन हो, युद्ध भूमि में हो, कृष्ण हमारे बीच अनेक रूपों में आते हैं। और आइए चलते हैं देश दीपक मिश्र के साथ आगे के दृश्यों के लिए।
1: जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए, जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए, अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए, समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का। और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है प्रेम का, भक्ति का, उल्लास का, उत्साह का, आनंद का, माधुर्य का। उछलते कूदते पीत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी, वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं। और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूं, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हमारे प्रशासन की एक कर्तव्य विवशता दोनों एक से बने हुए हैं। और इस समय कहते हैं कि इस पूरे भवन में एक अद्भुत वातावरण है, और ये वातावरण सिर्फ यहाँ नहीं, भागवत भवन में नहीं, मथुरा में नहीं, हर घर में नहीं, गोकुल बरसाना वृंदावन और नंदगांव में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है। क्योंकि अभ्युत्थान आए अधर्मस्य संभवामि युगे युगे का जय घोष करने वाले हमारे परमात्मा का जन्म हुआ है। लाला ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धराधाम पर मेरी उपस्थिति है, तालियां हाथ उठाकर दोनों हाथों से तालियां बजाकर करतल ध्वनि करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए एक लय में, एक ताल में, एक धुन में, क्योंकि यहाँ संगीत की लहरियां भी हैं और हमारे परमात्मा गीत संगीत और नृत्य के भी गुणी हैं। यहाँ भगवान के जो विग्रह हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में हैं, यानी कि तीन कोण से हल्के से तिरछे हैं, जो भगवान बताते हैं कि लचीला होना जीवन में कितना आवश्यक है। और ये शैली उनकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य में भी मिलती है। भगवान की आंखों से बरसती हुई करुणा, राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने हैं, वो रोमांचित हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम भी हैं, सखा भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं और निष्काम कर्म योगी भी हैं। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला हैं, हमारे लाल हैं, हमारे शिशु हैं, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है तो कहीं सती के कटे मस्तक पर दुखी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गूढ़ है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गूढ़ अर्थों को भी लेके आती हैं। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण, जब चारों ओर अंधेरा होता है और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं, हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को, ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धराधाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धूप तेज हो गई है, उत्साह

0: की भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुल कायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा। जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई ओर छोर कोई सीमा नहीं। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें देखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण। अपने कान्हा की लीलाओं को देखकर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी, तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है, आत्मा तो कारागार होता है जहां उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है। ये संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो, हमें निश्चलता पसंद है और तभी कृष्ण को आप प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उफंती यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा संकेत है जिसे समझना होगा। उफंती लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर, दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में, यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा, जो कि शिष्य रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे और शेषनाग की छत्र छाया में, जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथी श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देशभक्त। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बाहर लाया गया, जहां पर एक कामधेनु स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है, एक बाईं ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेनु विराजित है, जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्धधार से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बाईं ओर मंच है वहाँ पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियाँ खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। कहीं प्रेमी रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं, एक महान योगी रूप में, नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं और ये बाल लीलाएं करते हैं। ये मन को आनंदित करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, जुमे चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है। और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है, इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी तो प्रकृति, पशुधन, कृषि, जीवन संरक्षण, सहकारिता, सामूहिक एकजुटता का प्रमाण है कि किस प्रकार से अगर कोई संकट आता है, भले ही देव इंद्र क्यों ना हमारे विपरीत हो, लेकिन हम सबके साथ मिलकर सबके सामूहिक सहयोग से हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये संदेश देना भगवान के कृष्ण का, जो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था, जो उन्होंने दर्शन दिया है, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रसाद हो सकता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पंचाभिषेक की तैयारी हो रही है। इसमें पंचामृत बनेगा, दूध, घृत, शक्रा, शहद और इन सब के साथ गंगा जल। और यह अभिषेक के उपरांत यहाँ पर रात में 12:40 तक ये होगा, उसके बाद 12:50 पर श्रृंगार आरती होगी और उसके बाद 1:25 से 1:30 तक शयन आरती होगी और प्रातः यहाँ पर आनंदोत्सव होगा। इस समय कान्हा की नगरी में भक्त की हिलोरें उफान पर हैं और न केवल भागवत भवन में बल्कि पूरी

मथुरा नगरी में हर जगह हर मठ में मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इसमें जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर जो भक्तजन भजन गा रहे थे उनके साथ साथ तालियां बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठा कर रहे हैं। और ये अत्यंत भावुक क्षण है जब भगवान का प्रभु का अभिषेक चल रहा है और यहाँ पर जो विसर्जन बैठे सुरक्षा कर्मी है वे भी हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तजन है इनकी आंखों में आंसुओं का प्रवाह है, अत्यंत भावुक हैं। मैं बात कर रहा था अनेक श्रद्धालुओं से बात की जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारिक जनों के साथ में आते हैं। और यही मान्यता रहती है कि पिछले कई वर्षों से कुछ आने वाले श्रद्धालु हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रभु उन्हें अपने पास बुला लें। कम से कम आज के दिन जब प्रभु का प्राकट होगा, अजन्मे का जन्म होगा, पालनहार का जन्म होगा, वो यहाँ पर आए। और इस भक्ति के सागर में मैं श्री कृष्ण आप सभी को प्रभु के आगमन की अजन्मे के जन्म की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसी के साथ मैं श्री कृष्ण अपने साथी कमेंटेटर देश दीपक मिश्र, डॉक्टर बीनू खरे और डॉक्टर नित्य गोपाल के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं।

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை தீனா, பத்ரி ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்களை கேட்டு ரசித்தோம். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कामकाज के नियमों को अंतिम रूप देने, आरक्षण को तर्कसंगत बनाने और जनकल्याण व विकास से जुड़े अन्य मामलों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में

की जानकारी दी जो 7 सितंबर से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन तथा गुजरात के द्वारका में मुख्य आयोजन हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न मंदिरों को भी इस अवसर पर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास के में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ब्रिक्स देशों के प्रमुख मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विजय मेहरा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड में भारत के राजदूत कुमार तुहिन के साथ कल पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण के लिए डच नेशनल इंस्टीट्यूट का दौरा किया। जुलाई में जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी KVL कांता की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जल प्रबंधन में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नीदरलैंड का दौरा किया था और गुजरात में कल्पसर प्रोजेक्ट को लेकर तकनीकी बातचीत की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों

पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वियतनाम के दा नांग में चल रहे पिकबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन भारतीय टीम ने लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर

0: நெஞ்சம் மறப்பதில்லை கேட்டு ரசித்தீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा

0: केंद्र हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वार्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। उन्होंने भारत पोलैंड संसदीय समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की और मौजूदा भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त कार्य योजना 2024-28 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की से मुलाकात की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के विषयों के पेपर में गलतियां की शिकायत के बाद दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वी राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The 3-day BRICS Chief Justices Foreigners begin in New Delhi. The Foreigners brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and Senior Judicial Leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the Foreign Chief Justice of India, Justice Suryakant held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries.

0: இனிய ராகம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विश्व

0: शिक्षा केंद्र है। आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन मशहूर शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल वारसा में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। उन्होंने भारत पोलैंड संसदीय समूह के सदस्यों से मुलाकात की और मौजूदा भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त कार्य योजना 2024-28 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रोदोस्लाव सिकोरोस्की से मुलाकात की। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि राज्य में माहौल शांतिपूर्ण और स्थिर हो गया है। नागालैंड अब तेजी से भारत के बाकी हिस्सों और दुनिया से जुड़ रहा है। राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि आज का नागालैंड कई दशक पहले की तुलना में बहुत अलग है और यहाँ शांति, कनेक्टिविटी और विकास में काफी सुधार हुआ है। भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने अपने ई नाविक पोर्टल पर एक सीफेरर ट्रैकिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये मॉड्यूल ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में भारतीय नाविकों और जहाजों का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाएगा, जिससे समय पर जानकारी साझा करने, तालमेल बिठाने और आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India Justice Suryakant held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, उनके चरित्र का निर्माण करने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक्स के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण

0: आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स 2026 में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा वो वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में इस संस्थान ने कई विद्वानों, पेशेवरों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर हैं। वो कल गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों के साथ गोवा से संबंधित मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बाद में वो मादक पदार्थों पर एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। श्री शाह शाम को अटल भवन में नव निर्मित भाजपा राज्य कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। वो पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सोमवार को गृहमंत्री पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और गोवा पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान में शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रखे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वारसा में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में आज भारत का मुकाबला होगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।